नाम रूपी अमृत पीता है। ओह ही सुचे रहे हम सुचे से ही नानका, जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारा विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे मारे पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे, कोल नहीं बैठन देंदे, आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो, ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया श्री।

आख्या ए सोना मनुच्छा जन्म अमृत वेला अमृत वेले रूपी सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया है ते तू इसनू सौके बतीत कर देवेगा ऐ मेरे मन तू बहाने कर रहे हैं भाई गलियां चिकड़ दूर घर करने ने हो रब दे नाल प्रीति पौनी ते फिर सरफा करना भाई मते ए कंबली ए लोई भेजना जावे तो फिर तेरा प्यार कादा होया तां फरीद जी कहंदे आ ना गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तां भिजे कंबली रहा तां टुटे ने हो आख्या भिजो सिजो कंबली अलो बरसे में हो एवी तां उहदे हुकम विच बारिश हुंदी है ते तू उहदे हुकम दी अदूली करके जे सतसंगत विच नहीं जांदा ए लेख ना लिख तेरी नितनेम दी कड़ी इत्थे तेरे आलस करन नाल जे बिना जपन दे बतीत हो जावे ए लेख ना

फरीद जी बैठे हन रब दे प्यार विच जुड़े होए ता आकाश बाणी होई हे फकीर एवें जमीन पर लेट के क्यों दुख पा रहे हैं मंजा लेप तुलाई कुछ कपड़े नाल ले ले क्योंकि सर्दी दे दिन हन ते नाले सिमरन कर नाले सुख पो ता बाबा फरीद जी रब दे रंग विच रते होए जिन्हां दे हिरदे विच सिक सी साईं दे मिलन दी ए गल सुन के फरीद जी कहंदे ने हे वाहिगुरु मेरे पास खटोला भी है लेप भी है कपड़े भी हन आख्या केड़े कपड़े हन केड़ा खटोला है ता बाबा फरीद

रूप मंजा मेरे पास है, चिंता करके जो दुख हो रहा है ए मंजे दा वाण है, ते आप जी दा जो बिरह है न मिलन दी शिक है, ए लेप है ए तुलाई है, ए मैं ऊपर लेके सौंदा हां, क्योंकि मनुच्छा जन्म मिले है बिना शिक तो ए मनुच्छा जन्म सफल नहीं हो सकता। इसलिए बाबा फरीद जी कहंदे हन कि प्रभु मिलाप नू सदा चेते रखना ही उजले कर्म हन। ऐ मेरे मन मते तू ओ शिक वाला पासा छोड़ के ते माया विच खचित हो जावे।

खड़ोता। एक हनेरा सी, दूजा उसनू घट दिसदा सी लोहार नू। चंगा मुड वेखण वास्ते उस लोहार ने कुहाड़े दा पिछला पासा वगा मारिया बाबा फरीद जी नू। उस कुहाड़े दे वजन नाल फरीद ने नेत्र खुले ते लोहार नू खड़ोतियां वेख के आप दे नेत्रां तो जल आ गया ते ए शलोक उचारण कीता। कंध कुहाड़ा सिर घड़ा वन कै सर लोहार, फरीदा हो लोड़ी सहो अपना तू लोड़े अंग्यार। ए लोहार कंध कुहाड़ा, कंधे ते रख के कुहाड़ा, सिर पर पानी दा घड़ा चुक के ते फिर बन विच फिर रहा लकड़ लभदा। ते फरीद जी कहंदियां तू कोले लोड़दा है, तू लब रहे हैं कोई चंगा जिहा मुड लब जाए, उसनू कट के साड़ के कोले करके घर लै जावां।

कि काल जो है ए मौत रूपी कुहाड़े नू हर वेले चुक के हर मनुख दे नाल है। परमेश्वर दे हुक्म अनुसार ए जीव आत्मा नू ले जांदा है। फरीद जी कथन करदे हन, मैं तो अपने पति खुदा दी प्राप्ति नू चाहुंदा हां ते तू मेरे अंगियार औगणा नू वेखना चाहुंदा है, इस दे विच कोई औगण होवे तां मैं इस नू फड़ के लै जावां, कदों इस दे श्वास समाप्त होण ते मैं इस नू लै जावां। तो फरीद जी अपने प्यार विच रंगे होए उस लोहार नू कह रहे हन, भाई तू अंगियार नू लोड़ रहे हैं, जंगलां विच असी रब नू लभ रहे हां, कंध कुहाड़ा सिर

खास किस्म की अवस्था ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। उसनु तुहाडे सामने मैं

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना चुकी क्या है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हें शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था उच्चा करने की कोशिश करिए। इन्हें शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप नू देख सकी। मैं आप जी के सामने साडे सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड ओ रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिने हाँ उन्हां दे हिरदे क्यों जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखन लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वो हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हन। तो उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश की है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने ये भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जराई अपने लहां सो सज्जन तोल। कहंदे इंतजार तमन्ना इतनी बद गई है कि अगर कितने मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहंदे मैं ये भी करनू तैयार हां। हम भी कंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन तोल। तो हुण तक मैं जितनियां भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ये पेश कीता है, ये आप जी दे सामने रखिया है कि गुरु साहब एक खास किस्म दी अवस्था, एक खास किस्म दा ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही पाकशील लोकां ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उस नू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जिहा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हां जिस दे विच

ग्यारह श्लोक है। अगर असी ये बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर ये कहते हैं कि बिखियन स्यो काहे रचो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनू असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनू असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लैने। लेकिन गुरबाणी च जदों उदास लफ्ज आता है तो इस दे जो भाव हैं इस दे अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नू किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंग्जाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਟਾ, ਇੱਕ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਥੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी भी एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल प्यार हुंदा है, उस दी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उस दी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वाले की संगत गुरबाणी के विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू यह नहीं मिलता तो उस दे जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरामता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन्हां चीजां दे विच ही उलझे रहिंदे हो, फसे रहिंदे हो, खोए रहिंदे हो, तुसी इन्हां दे विचों कदे उपराम ही नहीं हुंदे। भाव के तुसी कदे अकदे ही नहीं हो, कदे रचदे ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हां चीजां दे विचों कदे निकलदी ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यो काहे रचियो निमख ना होहे उदास। कहते हैं निमख भरदे वास्ते भी पल भरदे वास्ते भी तुसी इन्हां नूं छड्डना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्हां दे विच तुहाडी जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होहे उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहिब साडी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साडी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध बिख भूख प्यासा आ साडे पल्ले, काम क्रोध बिख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, पाप जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया दे झमेलियां तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का पाप जदों इन्हां चीज़ां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लभदा होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहंदे हन उदासी। साडी अवस्था अजिही नहीं है, कबीर साहब दी है। कबीर साहब कहंदे हन

चित्त आनंद पूर्ण परि परमात्म देव कातरे मुतलक माहे जबी शाहे खूबा हसी मुकदस ला इंतहा कुल आलम दी सुल्तान सरवरे कायनात पतत पावन राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुशोभित बैठे हो तो सतगुरां ने बड़ी साडे ते कृपा कीती है कि सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे नाल रागां दा खजाना जो है बख्शिश कीता है। ते सतगुरु पातशाह जी ने मुख रागां तों इलावा मिश्रत राग सतगुरु ने दित्ते सानू। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दे बारे दा सानू हुक्म होया है कि कोशिश करो कि सारी बाणी सारा कीर्तन साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बाणी दा होवे। तो आओ आरंभता विच ही शस्त्रनामा सतगुरु पातशाह जी ने बहुत सुंदर पुस्तक कीती है। सतगुरु पातशाह जी ने विचित्र नाटक विच पातशाह जी ने शस्त्रां नूं भगवती नूं खग नूं नमस्कार कीती है। सतगुरु पातशाह जी उच्चारण करदे विचित्र नाटक नमस्कार मोरंग तीरंग तुहंगंग नम खग अदंगंग अपेंग अपंगंग गदांग गृष्टम नहो समो सह

क्योंकि साडा जीवन है कलयुग ने साडियां अखां बंद कर रखियां हन की सच है की झूठ है सानू कुछ पता नहीं लगता साडा जीवन बन चुकिया है बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म जे ए सुभा एक जन्म दा होवे ता कोई चंगा कम करके इस सुभाव नू बदलिया जा सकदा पर सानू ता कई जन्म हो गया ए पुलां करदियां याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म कर्म कर साडे ते रहमत कर मंदे चंगे असी तेरे हां साडे ते दया कर तू बड़े बड़े पत्थर तार देते हन है बख्शिशां दा समुंदर है जे साडे पापां दे दो चार बेड़े इस समुंदर विच डुब भी गए तां तैनू की फर्क पवेगा इसलिए दया कर।

इतनी सिमरन सेवा भगती करदिया होया भी किसे गल का हंकार नहीं करना। ये नहीं मन में लियाना भाई मैनू तो गुरु जरूर तारे ही गा ना, भावे किसी होर नू तारे ना तारे। नहीं, साडे जपा तपा नाल नहीं गल मुकनी। हे निरंकार, तेरी बख्शिश वड्डी है, तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है। ये अरदास करन दे ही सानू गुरु ने प्रेरणा दिती है। बाबा साहब सिंह जी बेदी गुरु नानक दी अंश बंश जो हर एक शहरां विच जाके गुरु घर का प्रचार करया करदे सन, और बड़ा लश्कर सी, बड़ी मानता सी इना दी, हाथी घोड़े रथ होर बेअंत संगतां ने होना, ते जिस शहर जाना उन्हां ने दो दो चार चार मील अगों ही चौंकियां करदियां कीर्तन करदियां लैके आउणा। इतना अदब सत्कार होंदा सी, वड्डियां कमाइयां वाले सन बाबा साहब सिंह जी। जदों चंग मिखियाने आए साडे शहर विच, बजुर्गां ने बचन सुनाया, चंग मिखियाने आए, कितनियां संगतां आके जुड़दियां सी, ते एक कलंदर रिश लैके आ गया। बाबा जी अगे आके नमस्कार कीती, ते रिश नूं कहण लगा, तुम्हें मत्था टेक, ए वड्डे घर हन, वड्डे घर दे बच्चे हन, गुरु नानक दे बच्चे हन, इत्थों वड्डियां बख्शीशां मिलनगियां, वड्डियां दातां मिलनगियां। क्योंकि रिश नूं समझाया होया सी, ते रिश ने भी मत्था टेकिया बाबा साहब सिंह बेदी जी दे अगे, इत्थों वड्डियां दातां मिलनियां हन। ता बाबा जी कहन लगे, फिर वड्डी दात देईए। हां महाराज देओ। ते बाबा साहब सिंह जी ने अपने मुंशी नूं कहा कि जा 32 रुपये नौआं ने जाके खजाने विचों ले आ, ते इस कलंदर नूं दे दे। जितने पैसे हजूर ने हुक्म कीते आके कलंदर दी चोली विच पा दिते। बड़ा खुश होया भाई, बड़े बड़े घर वेखे हन, कोई 54, कोई 98, कोई रुपया, कोई वड्डा होएगा जिसने 5 रुपये दिते होंगे, पर 32 रुपये नौ आने, एडी वड्डी बख्शीश। बाबा साहब सिंह जी कहन लगे कलंदर नूं, भाई चंगी तरह ये पैसे गिन लै, ये 32 रुपये नौ आने हन, तू क्या सी ना रिश नूं, भाई वड्डियां बख्शिशां मिलदियां हन। हां महाराज, तुसी दित्ती वड्डी बख्शिश है। ओ अपने आप नूं, ओ 32 रुपया नूं वड्डी बख्शिश समझ रहा। ते बाबा जी कहन लगे, हुण रिश दे गल विचों रस्सा खोल दे, महाराज ये भज जाएगा ते फिर हाथी नहीं आउणा। कहन लगे, हुण ये भजन जोगा कित्थे रह गया है, हुण ये किते नहीं जा सकदा, हुण इहदा अंत समा नेड़े है। जो तेरा इसका हिसाब सी ना, वह पूरा हो गया। तू भावे पैसा पैसा करके कट्ठा करके 32 रुपये नौ आने तू इहदे कोलों कर्जा लैणा सी, तैनू कट्ठा दे दिता है, ते ए हुण गुरु नानक दे दर ते आ गया, ए हुण बख्शिया गया। ए तेरे नाल रहिंदा तां पता नहीं किहड़ियां जूनियां विच परमना सी, क्योंकि हुण गुरु नानक दे दर ते आ के वड्डी बख्शिश मंगी है इसने, हुण ए गुरु नानक दे चरणां विच जा के विराजेगा। तो अनेक लोगां ने ए वचन सुने और वेखे के उसे वेले रिश शरीर त्याग गया, ते उसकी रूह जो सी वो गुरु नानक दे चरणा विच जा विराजी। दया करो किस मेहर उपावो, गुरु नानक दे दर ते आके जेड़ा भी कोई भाई श्रद्धा दे नाल चुकता है, गुनाह बख्शाउंदा है, फिर बख्शन विच देरी नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भी ये शब्द उचारण किया साडे गुनाह बख्शाउण लई। ओ आप तां निरंकार सन, आप तां समर्थ पुरख सन, अनंत कला दे मालक सन।

आश करनी है कि मेरा मुझ में किश नहीं, ते जे कुछ चला गया है ता हे निरंकार ए मेरे लिए चंगा नहीं होना, ताइया तू मोड़ लिया ना। उच्चारण करो श्री गुरु नानक दे घर विच हंकार नूं कोई था नहीं, इत्थे वड्डे तो वड्डा पापी आके तै पवे बख्शन विच देरी नहीं, पर जेड़ा हंकार करदा है कुछ बन के आउंदा है गुरु नानक दे दर ते ओ कदे कुछ लै जा नहीं सकदा, सगों अपने पुन दे जांदा है, वंड जांदा है। उच्चारण करो श्री इथे ता भाई ए अरदास करनी है अपनी करनी कर नरक हूना पावों ठोर, ए निरंकार जे मेरिया करनिया ते जाओगे जे मेरे गुनाह वल तकोगे ता शायद मैनू नरक भी ना चल सकन। तुमरो बिरद को आशरो समार हो, तेरा बिरद है तेरी बख्शिश सानू तार सकदी है, तेरिया रहमतां दा सदका ही असी तर सकदे हां, इसलिए दया करो।